जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तय दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर भजन पेश की गए हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गए है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और ये प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा, ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

शंकर जी की आवाज में अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले आपकी बार बाबला जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश किया।

सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहे।

0: रेडियो SBS की जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवास में श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बसबीस की गई। सुनने वालों चले अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बजरंग बाण पेश किया जा रहा है, उसके बाद आरती भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बसबीस किया जाएगी। रेडियो SBS की जरिए जरूर सुनते ही रहना। तो चले यहां से प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

सुंदर सा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारी सभी वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रिया जी की ओर। श्रिया जी की आवाज में अब की बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में सपने साजन की फिल्म का नाम

प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.com.au उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

मुंशी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

अहम हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में एक बार फिर से मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम

बाहर की ओर देखा जाए, धूप ही धूप का मौसम है। और आप सभी सुनने वालों को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ भी स्वागत किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने आपको खबर किया है कि ये प्रोग्राम हमेशा सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा सुनते हैं, तो आप सभी सुनने वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। किशोर कुमार एंड लता ने फरमाया आज की प्रोग्राम में, ये काफी प्यार भरी गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और आपकी बार गाना होगा कितनी अकेली, सॉन्ग बाय द लेट लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तलाश कितनी अकेली। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: खासतौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और प्रोग्राम जहां जहां पर भी आप सभी सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में आपकी बार ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है फैशन। फैशन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में।

हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश की गई फैशन फिल्म का नाम था। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है ओ सनम तेरे हो गए हैं हम, मोहम्मद रफी एंड लता।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। आशा भोसले एन महेंद्र कपूर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जबकि पुरानी नख में पुरानी फिल्मी गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। शहर उत्तरेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले अब की बार सुनील दत्त का एक खास फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्म श्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बप्पी लहरी एंड लता मंगेशकर तो पर मिथुन का फिल्म है, फिल्म सुरक्षा और गाना का बोल है दिल था अकेला अकेला। सभी हितनक में सभी खूबसूरत प्यार भरी गाने संगीत भरी रेडियो स्टेशन रेडियो SBS के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर एंड बब्बी लहरी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सुरक्षा। चलिए प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

सब ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल दीव।

सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना किशोर कुमार की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का नाम है किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार के आवाज में द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार के आवाज में फिल्म आपकी कसम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी के आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम तीसरी कसम।

अर्शद जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई फिल्म तीसरी कसम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जिस फिल्म का नाम है राजकुमार। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा रेडियो SBS का आज की इस खास प्रोग्राम में। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 030-262-6611। शहर उत्रेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनवालो की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मरहूम मोहम्मद रफी फिल्म का

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले किशोर एन आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक काफी प्यार भरी गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस दीवानी है, महल फिल्म का नाम, गाना जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड आशा के बाद मुकेश और लता जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये खास गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम मेरे हम सफर, मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन।

इसके गए गाना का बोल किसी राह पे किसी मोड़ पे, फिल्म का नाम मेरे हम सफर। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब की बार एक काफी खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी एंड

सफाई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की।

मुलाकात मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे ये तमाम पुरानी नगमे आप सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में भी स्पीड है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, इतनी सी बात है गाना कबूल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रेम अगन ये बात फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

Udit Narain और पूर्णिमा की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। प्यार कोई खेल नहीं, उसी फिल्म का ये गाना अब की बार पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

दिवस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

सूरत गाना। चलिए फिल्म दबंग की ओर है, सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर, उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एंकर।

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

राज्य की आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना लेकर। गाना का बोल है मेरी भीगी भीगी सी, सॉन्ग बाय द मैन विद द एफर्ट क्वीन वॉइस।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

हरियाणा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म 1952 का रिलीज किया हुआ फिल्म, फिल्म का नाम है बाउजू बाउरा। उसी फिल्म का ये सॉन्ग पेश किया जा रहा है, ये गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी

उसी फिल्म का गाना पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना तू गंगा की मौज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और चले आपकी बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में बजी है प्यार की सहनाइयां। अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की ओर।
1: देखिए क्या ढूंढते हैं,
0: और गाना का बोल है अपनी भी क्या जिंदगी है, मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे मन्ना डे की ओर। मन्ना डे की आवाज में ये गाना, फिल्म का नाम है आनंद, आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार हम आपको ले चलते हैं फिल्म अभी।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में सोमभाई किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और एक काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में लता जी की आवाज में।

कर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में अबकी बार तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। चमका चमका।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए काफी खूबसूरत गाना की ओर, मन्ना डे और लता मंगेशकर होगा आपकी बार प्रोग्राम में।

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम सुजाता।
1: दोनों बातें एक ही आवाज में ऐसी खूबसूरती से समाती हैं और जो कुछ भी गाते हैं ऐसी सरलता से गा जाते हैं जैसे कुछ भी प्रयास ना करना पड़ा। यूं तो इन्होंने बहुत से गीत गाए हैं लेकिन ढूंढ लाया हूं ये गीत मैं तेरे लिए।

0: मैं चलता हूँ मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली करमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ल दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, पास आउट द फिल्म आजा नच ले, एंड आउट द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस कम्स गज़ल दो शारदा, ले जा मेरा दिल।

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदोर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयु द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदोर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन het programma Gietonkele Her via Radio SBS.

हो बस यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। तेरे इश्क में ये दिल कहे अब और कुछ भी ना चाहिए।

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस गजंग दूर ग्लेन जॉन एंड कॉम्ट द फिल्म वो लम्हे। हाउ द फेदर मैट बर्थडे बैश गजंग दूर यो यो हनी सिंह आउट द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है द फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitaan Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakaro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

एक्वामैन द फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नज़ारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। एंड आउट द फिल्म जुड़वा त्वे कॉम्स गज़ान द अनु मालिक एंड नेहा कक्कर, ऊंची है बिल्डिंग 2.0।

0: पट्टा मेरा वस द फिल्म मुझे कुछ कहना है इन इसके सौंदर अनुराधा श्रीराम द फिल्म अजनबी कौम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या
1: अय्या।

आप हमारी जान बन गए सुसमधुर मिथुन, विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीचे क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर्ड नार एट प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja or Muskuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दो सलमा आगा एंड बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietonke Leher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni Wit Sani komt Roeberoe.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है।